0: क्या बात बोला चिड़िया, मेरा दिल पिथर पिथर हो गया।
1: अयो निम्मल का नेने तो सरदा रास्त पाट प्राक्टिस अंते अंते रही।